0: a tere rango varada.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

तो खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू।

0: 107.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: cash wins with Big Ticket.
1: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
0: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
1: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
0: Don't forget the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
1: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
4: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अरिजीत सिंह में जुमे जो पठान, अगर यू शाहरुख खान, यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर द फिल्म टू रिलीज, यू ऑलरेडी स्टार्ट क्रिएटिंग बज़ जस्ट बाय एयरपोर्ट अपीयरेंसेस।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अभी तो 4 महीने बचे हुए हैं यार, उससे भी ज्यादा फॉर द रिलीज ऑफ किंग शाहरुख खान की जो अगली फिल्म आने वाली है। बट अभी से ब्लीच बाल, कभी टोपी वाला लुक, एयरपोर्ट पे कभी इमिग्रेशन वाले से बात करते हुए, ये सारी की सारी न्यूज स्टोरीज आ रही हैं। व्हाट इज कमिंग अप इन बॉलीवुड? आज एक पंकज त्रिपाठी फिल्म इज गोना कम आउट, इट्स कॉल्ड ओ माई डॉग, या फ्रॉम द मेकर्स ऑफ ओ माई गॉड। इसके बारे में कुछ देर में बात करने वाले हैं। Coming up just a while, cocktail 2 se jab talak. This is still the first hour of the show, the early morning request. In case you got a request to make for yourself, your neend bhagane ke liye, ya someone special, let me know. WhatsApp me 0543091062.

0: देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: देख

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 8:07।
1: बॉलीवुड

0: रूप पति और रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, पति पत्नी और वो दो, हर कोई आजकल जाना चाह रहा है मॉन्टेनेग्रो।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मॉन्टेनेग्रो की भाई कहानी है क्या? सी द होल वीजा फ्री साउंड्स रियली अमेजिंग राइट, बट व्हाट आर द डिटेल्स, आर देयर एनी फाइन प्रिंट? सबने सुना है कि 10 दिन के लिए आप वीजा फ्री जा सकते हो मॉन्टेनेग्रो, बट नॉट एवरीबडी क्वालिफाइज राइट। सो क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया? एक तो सबसे पहली बात कि ये सदा के लिए नहीं है, इट इज ओनली टिल द 1st of October दिस ईयर। May 1st से लेके October 1st तक ये स्कीम है, एंड एलिजिबल UAE residents कैन विजिट मॉन्टेनेग्रो फॉर अप टू 10 days विदाउट अ वीजा। नाउ टू क्वालिफाई, हियर आर द 5 क्राइटेरिया। सबसे पहले आप 3 साल से यू शुड बी अ UAE resident। ऐसा नहीं कि आप अभी आए अभी मॉन्टेनेग्रो निकल गए, नहीं, 3 साल से अगर आपके पास UAE residency है तो सबसे पहला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है। सेकेंड, यू गॉट फ्लाई डायरेक्टली टू मॉन्टेनेग्रो फ्रॉम UAE। ऐसा नहीं कि किसी और कंट्री के थ्रू वाया अगर आप आए तो हो जाएगी दिक्कत। देन यू गॉट हैव अ पासपोर्ट दैट्स वैलिड थ्रू आउट द स्टे, दैट्स बेसिक स्टफ। कन्फर्म्ड होटल बुकिंग या फिर टूर पैकेज आपको दिखाना है, एंड अ रिटर्न टिकट एज वेल। सो शेंगेन गिरी तो आपको करनी है, लेकिन साथ में डोंट फॉरगेट, 3 साल से यू मस्ट बी अ UAE रेसिडेंट एंड फ्लाई डायरेक्टली टू द UAE, टू मॉन्टेनेग्रो रादर, फ्रॉम द UAE, नॉट वाया अनदर कंट्री। एक और चीज़ है दैट विद इन 24 hours ऑफ लैंडिंग देयर यू मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ विद द अथॉरिटीज। 24 घंटे हैं आपके पास। नाउ इफ यू स्टिंग इन अ होटल तो होटल वाले आपके लिए कर देंगे, बट अगर आप Airbnb टाइप की जगह में रह रहे हैं देन यू गॉट डू इट योर सेल्फ। सो या देर इज अ बिट ऑफ कसरत इन्वॉल्व। ऐसा ना हो कि इंस्टेड ऑफ वाहवाही जाए मच जाए थोड़ी तबाही। From the upcoming film Toxic, Tabahi coming up, Vishal Mishra ki awaaz, saath mein Raj Shekhar. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: about things that sound like an affair. अमिताभ बच्चन, मतलब एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इन जस्ट अ वाइल, जिसको सुन के आपको लगेगा नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है. एट द एज ऑफ 83 ही इज डूइंग समथिंग अनबिलीवेबल. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. आवारापन 2 से वे जुनून. And there's also a brand new track from this film that has just been released, coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Big 106.2.
1: Big 106.2. The beat of Bollywood. Are ho, Samba. तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
1: चलो चले अलराज.
3: नमस्ते.
4: ओला.
3: अस्सलामुअलैकुम.
5: बोंजूर.
6: नी हाओ.
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो. इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. नो स्क्रोलिंग. विजिट selfdrive.ae. सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू.
7: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: InsuranceMarket.ae. Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
9: आपकी जीत. डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
7: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
0: It is 8:26 on the clock on this Friday की सुबह. Friday के दिन ट्रैफिक भी थोड़ा आराम आराम से ही शुरू होता है हमारी तरह a bit lazy. 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah, you'll find 4-5 minute की देर. आज unusual traffic you'll find a Rigga के पास as soon as you get out of Reef Mall. Al Ghurair Center से निकलकर on D88 you'll find a bit of congestion. This is southbound going towards D85. Also you'll find a bit of congestion at Almina Street D75 पर. And this is going towards the waterfront area in Dera. Iske alawa you'll find a bit of congestion building up E44 for Russell Core Wildlife Sanctuary ke aas pass. In case you spot something, give me a call, 800-1062.
7: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
10: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं. बहुत गहरा जाना चाहता हूं. देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं. और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है. फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे.
7: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Jasmine Sandler with Illegal Weapon 2 and what Amitabh Bachchan has done should be deemed illegal, I'm telling you.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अरे अब क्या कर रहे हैं अमिताभ बच्चन ने क्या कर दिया यार ऐसा कि it should be considered illegal. It's not the kind of thing that you're thinking. He is 83 years old. That's not illegal. He is still setting the bar for dedication at the age of 83. ये तो मतलब विश्वविख्यात हो गई है बात. It is world famous that Amitabh Bachchan is the first man to come on the set. You know, he puts pressure on other people like the director of the film कि यार अमिताभ बच्चन जाएंगे टाइम पे हो जाएंगे तो अगर वो अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार का टाइम पे हो सकते हैं नोबडी एल्स कैन अफोर्ड टू बी लेट ऑन द सेट सो ही इज द गाय हु एक्चुअली कीप्स द व्हील्स ऑफ प्रोडक्शन रनिंग एट अ फिल्म सेट लेकिन ये तो हो गई पुरानी बात नई नवेली खबर में क्या है अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 83 कंप्लीटेड अ 24 आवर शिफ्ट शूटिंग फॉर केबीसी कैन यू बिलीव इट सुबह 7 बजे एक दिन शुरू की एंड द शूट रैप्ड अप एट 7 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ While I really congratulate and kudos to Amitabh Bachchan for completing this 24-hour shift. भाई बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे सेट के ऊपर यार कितनी inefficiency है कि आप मतलब 83-year-old बंदा बैठा हुआ है आप उसको 24 घंटे बिठा रहे हो but yeah that's not I'm sure that's going to be a controversy in the coming days but not so far and Big B से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई शो का प्रीमियर डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है and missing the schedule could actually mean a job replacement शेड्यूल रिप्लेस किया या मिस किया तो फिर मेरी नौकरी खतरे में थी इसलिए मैंने कहा कि ये कर ही लेता हूँ सो मैराथन शूट के बाद ही हेडेड होम फॉर सम खाना घर का खाना अ लिटिल स्लीप घर का स्लीप एंड अनदर अर्ली कॉल द वेरी नेक्स्ट डे मतलब यार क्या क्या कहना यार इतनी डेडिकेशन तो आज की डेट में इस उम्र में हमारी नहीं है 83 तो भूल ही जाओ यार वाओ केबीसी लेटेस्ट सीजन स्टार्ट्स द 10th ऑफ ऑगस्ट दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:07।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो ज़ूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला ए वन लाइफ स्टाइल ए वन आई मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: बादशाह विद बावला रेडियो ऑन बिग 106.2 दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. एंड मैंने कहा क्योंकि फ्राइडे है वैसे ही ट्रैफिक वगैरह सब कुछ आज कल देर से ही शुरू होती है, दिन की शुरुआत ऑन अ फ्राइडे. बिग बॉलीवुड क्विज भी थोड़ा सा देर से.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इट्स अ चांस वी विन टू ओपन मूवी टिकट्स. एंड आज यू गॉट फिगर आउट द फिल्म. मैं एक सीन आपको सुनाने वाला हूँ, यू गॉट टेल मी व्हाट्स फिल्म दिस सीन बिलोंग्स टू एंड व्हाई एम आई प्लेइंग दिस पर्टिकुलर सीन. बिकॉज इस फिल्म के जो दो बड़े स्टार्स थे वो साथ मिलकर प्लाईवुड बेच रहे हैं. इट्स 2026, इट्स बीन आई थिंक अराउंड 16 ईयर्स सिंस दिस फिल्म केम आउट, लेकिन आज भी इट्स सो रेलिवेंट दैट यू नो दे स्टिल काइंड ऑफ गुड इनफ टू सेल प्लाईवुड. यार दैट्स हाउ बिग दिस फिल्म वाज. सो सुनिए सीन को और बताइए फिल्म का नाम.
2: डैड, ये आपके गेस्ट है?
3: ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर?
2: एक सेकंड.
4: छोले बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड.
5: अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में.
4: अच्छा.
0: थाली भर भर के एक बेगानी शादी में जाकर कुछ स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, प्लेटें भर रहे थे. तो ये ऑफकोर्स इतना सा सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी फिल्म है. इफ़ यू नो द फिल्म का नाम देन गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062 इज द नेम इफ यू आर अ बॉलीवुड पगलू. इवन इफ यू आर नॉट यू शुड नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. 800-1062 इफ यू वांट टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स. The Rang De Lal version of Oye Oye from Dhurandhar coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Big.

0: रिप्लेस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: Morning, 9:14 on this Friday ki subah, and unstable weather ka aaj aakhri din. That's what the NCM has predicted. Inland areas and eastern areas, you can expect some rain. Also, it might get dusty. Visibility might get affected. So be very careful. Today, 37 degrees Celsius right now. Humidity at 44%. Highs of 40, lows of 35 degrees.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: 9:18 on this Friday ki subah, it's the 7th of August, and Papa John's has launched its new oven toasted sandwiches in the UAE, crafted on sourdough style ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's made to be heard. Nashville chicken and buffalo chicken, 6 bold varieties in total, including pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch and imagine that first bite. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's, aa gaya muh mein pani. Ab chalo, kuch matlab ki baat karte hain. 2 open movie tickets jeetne ka, ye aakhri mauka. And I've paid out one of my favorite movies of all time ka ek scene. इसके जितने सीन में आपको सुना उतने कम है, बिकॉज इट्स दैट काइंड ऑफ लेजेंडरी फिल्म, लाइक इट्स लाइक अ लाफ अथॉन, लाफ अ मिनट काइंड ऑफ अ मूवी. सो ये जो पहली आवाज़ आप सुनेंगे ना, ये मिलकर किसी एक सुपरस्टार के साथ आजकल प्लाईवुड बेच रहे हैं. दैट्स द न्यूज़ दिस मॉर्निंग. सो लिसन टू दिस सीन एंड टेल मी व्हाट फिल्म दिस बिलोंग्स टू.
3: सर, दे आर स्टिल राइटिंग.
4: हेलो, टाइम अप.
3: सर 5 मिनट सर, हम आधा घंटा लेट आए थे. इट इज एन इमरजेंसी सर, प्लीज प्लीज.
5: एग्जामिनर ने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनीज मांग ली हो.
2: कौन से एग्जाम हॉल की ये बात हो रही है, कौन से फिल्म की बात हो रही है? इट्स मोर लाइक अ सिनेमा हॉल देन एन एग्जाम हॉल. तो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. अगर आपको पता है फिल्म का नाम, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. इन द बिग बॉलीवुड क्विज आज सुबह 2 टिकट्स जीतने का ये आखिरी मौका. द नंबर कॉल 800-1062. दिस इज द बिग

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae. Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
2: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस।
3: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
4: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
5: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It's 9:24 on this Friday ki subah. A bit of the usual traffic you'd expect at the capital Mafraq industrial area, heading towards Banias, heading north on E11. Zyada kuch nahi, 3-4 minute ki der hai, but ye traffic badhega. Then going towards Dubai Sharjah, heading south towards Dubai from Sharjah, you'll find at the usual

फायदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: And talking about moving your body, you know, my favorite app in recent times is this app called Stepa.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Sir, Kinjal se poochte how much she moves her body. Good morning, Kinjal. How are you doing?
2: Hi, Sid. I'm good. How are you?
0: 10,000 step count mein se kitne complete hue abhi tak? Batao.
2: अभी तो
0: 2,000
2: भी नहीं हुए.
0: अभी तो दिन शुरू हुआ है, बट देयर इज ऐप कॉल्ड स्टेपा इन विच यू नो यू कैन हैव यू हर्ड ऑफ दैट ऐप?
2: नो.
0: इन विच यू कैन एक्चुअली बेट ऑन योरसेल्फ. आप अपने आप पे बोली लगा सकते हैं कि आज का जो स्टेप काउंट है मैं कंप्लीट करूंगी कि नहीं करूंगी. एंड सो यू कैन यू नो $5, $10 ऐसे डाल सकते हो आप. सो इफ़ यू कंप्लीट इट यू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी. इफ़ यू डोंट देन यू लूज बिकॉज यू नो समबडी प्रॉब्ली मारवाड़ी केम अप विद दिस थॉट कि जब तक पैसों की बात नहीं होगी तब तक लोग अपना स्टेप काउंट कंप्लीट नहीं करेंगे. बताओ आइडिया अच्छा है कि बुरा है? आप किंजल नाम से तो गुजराती लग रहे हो. वेयर आर यू फ्रॉम?
2: आई एम फ्रॉम दिल्ली.
0: आप दिल्ली से हो फिर भी इतने कंजूस हो यार, क्या है यार? मैंने कहा $5, इतना भी पैसा खुद पे नहीं लगा. इट्स लाइक पुटिंग मनी ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक यू गिविंग इट आउट इन चैरिटी, राइट?
2: डॉलर है ना,
0: पर
2: रुपी थोड़ी है.
0: हाँ, कहीं आवाज से, आप बातों से तो आप सीए लग रहे हो. आप कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं हो?
2: That is actually so true.
0: मैंने पहले ही पूछ लिया था किंजल से कि वो क्या काम करती हैं, एंड शी इज अ सीए ऑन हर वे टू वर्क राइट नाउ. किंजल, व्हाट्स द ट्रैफिक लुकिंग लाइक, एंड आज वीकेंड का क्या प्लान है आपका?
2: आज कुछ प्लान नहीं है एक्चुअली, स्टेप्स ही कंप्लीट करने का प्लान है. बैडमिंटन खेलेंगे थोड़ा. आजकल वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन.
0: वेरी नाइस यार. आई मीन आई हार्डली हियर ऑफ पीपल प्लेइंग कन्वेंशनल स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन एंड नॉट द पिकल बॉल्स एंड फलाना ठिकाना. बैडमिंटन खेल रहे हो आप, क्या बात है. बड़े ओल्ड स्कूल ख्याल है आपके.
2: हाँ एक्चुअली ट्रू, आई लाइक बीइंग ओल्ड स्कूल.
0: है ना, चलो वेरी गुड. एक ओल्ड स्कूल मूवी के बारे में मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम, दो सीन सुनाए थे, एक नहीं, बिकॉज इट इज स्टिल सो रेलेवेंट इन द ईयर 2026. व्हाट फिल्म वाज आई टॉकिंग अबाउट? एक बेगानी शादी में तीन दोस्त घुस गए, प्लेट भर भर के खाना खा रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस. दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. कभी आपने ऐसा किया है दोस्तों के साथ, वेंट इनटू अ कंप्लीटली अननोन शादी एंड हैड योर फुल ऑफ बारात फूड और नो?
2: मैंने ट्राई किया है, हम अंदर भी घुस गए थे. हां, बट देन वी सेल्फ गिल्ट के चक्कर में हम बाहर आ गए.
0: सेल्फ गिल्ट के चक्कर में बाहर. वाओ यार, दैट्स अ फर्स्ट. चलो कांग्रेचुलेशंस, ये दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय द वीकेंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट. या
2: Thank you so much.
0: That is Kinjal. Sorry, CA Kinjal, who is the winner for these passes today. Bura maan jaate hain CA log agar aap CA nahi add karte to. It's almost like a doctor, professor ki upadhi ke baad CA. CA Kinjal, enjoy yourself. Thanks so much for taking part. Roz subah ye mauka aapke paas to flex a bit of your Bollywood muscle and win two open movie tickets in the big Bollywood quiz.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

चीजें डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लो बेबी लेट्स गो राइट नाउ देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: तारीफा रखो अपने पास भाई, तारीफ से बात नहीं बनती. यू गॉट टू रिंग ऑन इट लाइक दे से. एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट. क्रिस्टियानो के नहीं, जॉर्जिना की उंगली पे जो अंगूठी डाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक साल पहले 11th of August, दैट्स द डेट. हाउ एक्सपेंसिव इज द रेड? डिड अ बिट ऑफ अ गूगल सर्च ऑन दिस एंड इट इज वर्थ $2 to $5 million.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: अब क्या है ना कि एक साल हो गया है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट. सो ही थॉट के चलो यार कुछ करने को है नहीं तो एक क्या करें क्या करें. हाँ यार शादी कर लेते ना यार, बिकॉज एनी वेज आई हैव नथिंग एल्स टू डू. लिसन लेडीज, इफ यू आर जॉर्जिना रोड्रिगेज, वुड यू बी हैप्पी अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली काइंड ऑफ मैरिंग यू? यार फर्स्ट थॉट इज के हाँ ठीक है यार, मतलब रोनाल्डो से शादी, हु इज गोना बी सैड अबाउट? लेकिन हियर इज व्हाट आई थिंक, या अनपॉपुलर ओपिनियन इज द फैक्ट के अगर रोनाल्डो ने प्लेइंग डेज में, जब वो GOAT था, अभी भी है GOAT, लेकिन प्लेइंग डेज का GOAT इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, उस टाइम पे अगर उसने शादी वाली कमिटमेंट की होती ना, तब उसे मैं मानता. ये नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद सेटलिंग डाउन वाले स्टेज में अगर आप शादी कर रहे हो तो फिर तो मतलब ठीक है, इट्स वॉटर्ड डाउन. नाउ कमिंग बैक टू द वेडिंग प्लान्स, नाउ द थिंग इज कि पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स आ गए हैं, अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं, इवन द शादी का मेन्यू कार्ड इज आउट के शादी में क्या खाना होने वाला है, लेकिन यही नहीं पता कि शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है. गेस्ट लिस्ट भी बाहर आ गई है. Of course, I'm going to tell you about Haaland, who's the latest superstar. Lamine Yamal is going to be there. It seems Rio Ferdinand and Vin Diesel har jagah pahunch jata hai. Piers Morgan is going to be there as well. Then, uske Al Nassr teammates are going to be there. Vinicius Jr., Kylian Mbappe, Jennifer Lopez, har jagah pahunch jati phir se. And then, I Show Speed, also Drake, Travis Scott. Also, Travis Scott is in Odyssey as well. It is अनबिलीवेबल कि कहां कहां पर लोग आजकल पहुंच रहे हैं. बट वन नेम दैट इज मिसिंग फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट, येस नो प्राइज फॉर गेसिंग, इट इज मेसी. मेसी शादी में आएगा कि नहीं भाई, अभी तक ये नहीं पता कि शादी होगी कि नहीं, तो लोग पूछ रहे हो मेसी, हर एक बात में मेसी को घुसेड़ते हो. डेडिकेटेड टू आज की रात, जुम्मे की रात, कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. लेट्स सी, जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक पता चलेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली शादी की कि नहीं की. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड, सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: होम्स आर अस, बिग डील्स आर हियर. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabil Furniture Mall, Ood Mehta.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: Bollywood.

0: बोलो यार, कंट्रोवर्सी इज अपार्ट, तनिष्क बागची इज रियली रियली टैलेंटेड. अंगड़ाई फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, आई थिंक वन ऑफ द अंडररेटेड एल्बम्स इन रीसेंट पास्ट.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: सिर्फ सोलफुल दर्द भरे नगमे ही नहीं गाते फहीम अब्दुल्ला, उसका एक एग्जांपल ये अंगड़ाई फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट, ऑफ कोर्स फ्राइडे, और जब भी जुम्मा होता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक आंख हमारी होती है सिनेमा हॉल की तरफ एंड ओटीटी की तरफ. व्हाट इज दैट पीस ऑफ कंटेंट दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू? आज नेटफ्लिक्स पे एक सिद्धार्थ का शो आ रहा है. रिमेंबर दैट गाय फ्रॉम रंग दे बसंती? इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 20 इयर्स सिंस वी हैव सीन हिम इन अ हिंदी पीस ऑफ कंटेंट, एंड ही इज डूइंग दिस शो कॉल्ड, इट्स अ फिल्म एक्चुअली, ऑपरेशन सफेद सागर. इट्स कॉल्ड द हाईएस्ट एयर फोर्स मिशन. सो इफ यू आर इनटू यू नो वॉर, that kind of a genre, then you might enjoy this one. Operation Safed Sagar is out on Netflix today. Ek aerial campaign ke bare mein, through the eyes of the nation's youngest fighter pilot in the Golden Arrows ka squadron. So Air Force and war wala genre dekhne ke mood mein agar aap hain, so check out Operation Safed Sagar. We'll talk about it on Monday if I'm able to kind of catch it. But one film jo agar aapne cinema hall mein miss kar di, aap keh rahe yaar word of mouth to bada tagda hai yaar, I wish I'd seen in the cinema hall. You can catch it on Netflix again. Main wapas aunga. Imtiaz Ali ki ye latest film jisme everything apart Nasiruddin Shah, who's like one of the best actors that we've have, unki bare mein kaha ja raha hai ki it's his career ki one of the best performances. Of course, take it with a pinch of salt because he's been had a long and illustrious career, but it's a really good heart-wrenching performance from old and new. Nasiruddin Shah on one side and Vidhang Raina on the other. Main wapas aunga out on Netflix. जान से गुजरते हैं खान साहब ऑन द वोकल्स फ्रॉम धुरंधर कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2.

0: Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Lagta hai barf padne wali hai.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: गुड मॉर्निंग, 10:13 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह एंड स्टिल सम अनस्टेबल वेदर. बी केयरफुल, कब विजिबिलिटी अफेक्ट हो जाए पता नहीं. डस्टी एंड क्वाइट विंडी ऑल थ्रू द डे, दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड. एंड इनलैंड एंड ईस्टर्न एरियाज में बारिश के चांसेस भी हैं. इट्स 39 डिग्रीज राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 37%, हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 35 डिग्रीज.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It's 10:43 on the clock, and the only place where you find a bit of substantial traffic is on 611 for a change. And this is जैसे ही आप साउथ जाएंगे, अल सजा मजीरा वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको साउथ बाउंड ट्रैफिक मिलेगा. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज देयर सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन ओवर देयर. अदरवाइज क्वाइट अनयूजुअल फॉर अ फ्राइडे मॉर्निंग अराउंड 10:45 टू हैव ट्रैफिक ऑन 611. इसके अलावा यूनिवर्सिटी सिटी की तरफ आता जाता हुआ ट्रैफिक S112 इन बोथ डायरेक्शंस यू फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट 3-4 मिनट की देर. इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062.
2: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: जब भी कॉकटेल टू का कोई गाना आता है, इट मेक्स मी फील लाइक पेंडिंग होमवर्क वाला सिचुएशन. अभी तक नहीं देखी मैंने.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजीनेस, नेवर गॉट डाउन टू एक्चुअली वॉचिंग इट, बट हाँ, इट्स ऑन माय वॉच लिस्ट. पता नहीं है कितनी बड़ी वॉच लिस्ट अब तक बन गई है, बट इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय टू यू. डोंट फॉरगेट, रोज सुबह चाहे मंडे हो या फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, दिस इज द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग इन द मॉर्निंग, रीचार्जेस योर बैटरीज. कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट एंड ब्रॉट टू यू बाय हेना स्पीडी इजी हेयर कलर. कव योर ग्रे हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स, ऑल थैंक्स टू हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली. इट्स अमोनिया फ्री फॉर्मुला एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल, गिव्स यू वाइब्रेंट नेचुरल लुकिंग कलर, वर्क्स ब्यूटिफुली इवन ऑन थिक हेयर, डिलीवरिंग इजी इवन एप्लीकेशन. द इजी कॉम एप्लीकेटर मेक्स कलरिंग एज सिंपल as kangi. Combing your hair, get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with henna speedy easy hair color made in Italy. On that colorful note, I'm going to be taking your leave, but only for 2 hours, kyunki 1 baje se meri double shift aap jante hain aaj kal shuru hai. Big mix with me Sid 1 to 5 p.m. so in the meanwhile, don't forget to follow us on socials. Agar aap nahi karte kya kar rahe ho yaar, follow karo on insta via 106.2 big fm and I'm Sid Seth, SIDSETH. I'll see you in 2 hours. Till then, bye bye.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: योर हॉलिडे डिजर्व्स सेल्फीज, नॉट स्ट्रेस, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन फॉर योर ट्रेवल्स, कार, हेल्थ, होम, लाइफ और बिजनेस। कॉल 800 अल्फ्रेड।
3: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ, रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: लकी लकी।
1: ओले पेट्रोल ते पवाए नहीं। कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: Big Unlimited, the biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 93.2 The Beat of Bollywood. आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big one.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 1:05।
1: बॉलीवुड।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग थ्रिल विद मानसी, weekdays 5 PM to 9 PM on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Listen to her every day.
2: Mogembo, khush hua.
3: Filal, how is your day, Vicky?
4: Super amazing.
3: Wow, kaisa amazing kya hua hai? Zara share one amazing thing that happened with you today.
4: So yeah, last night mera room chala gaya na, so main gaadi mein soya. So उसी दिन उसी रात के मींस जब नेक्स्ट डे हुआ तो मुझे अपना पर्सनल रूम मिला, कोई बंदा नहीं मेरे साथ, अकेला बड़े रूम में।
3: तो ये मतलब किराया तो देना पड़ रहा होगा ना एक्स्ट्रा, क्या फ्री में मिल गया?
4: नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
3: ये कौन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स दे रहा है?
4: देख लो फिर,
3: आपने आपने बहुतों की नींद उड़ा रखी है मुझे लग रहा है।
4: क्या मतलब बहुत स्माइल करते हो, खुश रहते हो, दैट्स अमेजिंग।
3: आधे लोग मेरी हंसी के चक्कर में जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच।
4: मुझे तुमसे मोहब्बत है ना यार, ये किसने बोला?
3: मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अगर तुम्हारी सच्ची होती तो मेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी विक्की।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Good afternoon. Let's start with capital Abu Dhabi. आपको हल्का पुल्का traffic ही मिलने वाला है. This is heading south away from Rabdan Musaffa Industrial E30 पर and a bit of congestion sector 13 Khalifa City पर E20. इसके अलावा everything else seems to be quite smooth train. चलते हैं दुबई Sharjah की ओर. Nothing major. A bit of southbound traffic still 311 पर heading south going towards Dubai from Sharjah and a bit of congestion at Russell Court Wildlife Sanctuary on E44. In case आपको कुछ दिखता है, give me a call 800-1062 पर।
1: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड शोज़ ब्रॉट यू बाय इंश्योरेंस मार्केट.ae 30,000 गूगल रिव्यूज हैं विद 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन द यूएई ट्रस्टेड अक्रॉस द यूएई एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट इंश्योरेंस मार्केट.ae

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: दिस इज द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 2:05।
1: Bollywood.

मांगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: इट्स अ हॉट एंड हेजी फ्राइडे आफ्टरनून, टेम्परेचर ऑन एवरेज 42 डिग्री सेल्सियस अक्रॉस द यूएई, एंड कहीं कहीं पर बारिश के चांसेस भी हैं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अनस्टेबल वेदर, दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड। ह्यूमिडिटी राइट नाउ 50-55%.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Namaste.
1: Hola.
0: Assalamualaikum.
2: Bonjour.
3: Ni hao.
2: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
4: रोज इतने बजे ट्रैफिक तो होता है लेकिन उतना नहीं जितना कि एक डेढ़ घंटे के बाद होने वाला है. इट इज स्टिल द लाल बिफोर द स्टॉर्म. लंच टाइम ट्रैफिक भी अपना मना रहा है. सो हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा साउथ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा 311 E11 बोथ दीज आर्टरीज पर. देन यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स रसल खोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड शेख जायद रोड पर. ट्रैफिक इज स्टार्टिंग टू बिल्ड अप इन द नॉर्थ डायरेक्शन गोइंग टुवर्ड्स ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट. इन केस आपको कुछ दिखता है कॉल कीजिए 800-1062 पर.
5: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 3:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ।

0: insurancemarket.ie.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Bilal, how was your day, Vicky?
4: Super, amazing.
3: Wow, kaisa amazing kya hua hai? Zara share one amazing thing that happened with you today.
4: Yeah, last night mera room chala gaya na, so main gaadi mein soya. So usi din, usi raat ke means jab next day hua, to mujhe apna personal room mila. कोई बंदा नहीं मेरे साथ, अकेला बड़े रूम में.
3: तो ये मतलब किराया तो देना पड़ रहा होगा ना एक्स्ट्रा, क्या फ्री में मिल गया?
4: नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट.
3: ये फ्री कौन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स दे रहा है?
4: देख लो फिर.
3: ये देखो, आपने बहुतों की नींद उड़ा रखी है मुझे लग रहा है.
4: क्या मतलब बहुत स्माइल करते हो, खुश रहते हो, दैट्स अमेजिंग.
3: आधे लोग मेरी हंसी के चक्कर में जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं. गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच.
4: मुझे तुमसे मोहब्बत है ना यार. किसने बोला?
3: मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अगर तुम्हारी सच्ची होती तो मेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी विक्की.
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: गुड आफ्टरनून. इट इज ऑन एन एवरेज 42 डिग्रीज सेल्सियस अक्रॉस द यूएई. आज भी काफी अनस्टेबल वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इनलैंड एरियाज एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में बारिश के चांसेस भी हैं. दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग. ह्यूमिडिटी राइट नाउ एट 50 to 55%.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Big 106.2 पर this is the big mix with me Sid and these what if stories जो आती है ना जो हो सकता था what if this was true then how would Bollywood be those stories I find very interesting है. Recently an actor said that A.R. Murugadas the maker of Gajni इससे पहले कि you know Aamir Khan did the iconic performance in Gajni Salman Khan actually was the first choice of the director to play Gajni लेकिन Salman Khan का temperament प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड दैट इज व्हाई आमिर खान वाज रोप्ड इन सो हियर्स द अल्टरनेटिव यूनिवर्स थॉट फॉर दिस आफ्टरनून के सोचो अगर गजनी फिल्म में आमिर खान की जगह सलमान खान होते वुड इट स्टिल बी द फर्स्ट 100 crore हिंदी ब्लॉकबस्टर यू नो गजनी वॉज द फर्स्ट 100 crore की हिंदी ब्लॉकबस्टर राइट सो अगर आमिर की जगह सलमान होते वुड इट स्टिल हैव बीन द बिग ब्लॉकबस्टर दैट इट actually eventually turned out to be. I'm going to put up that poll question on our socials. Aap jante hain, our Insta handle is 106.2 Big FM. 106.2 Big FM. Wahan jaiye, you can take part in our poll and lots of contests out there. This is The Big Mix with me, Sid.
1: Carnival. The Last Ride. King.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit.
1: हर दिन को बनाइए better with a strong routine. Healthy habits के साथ Dabur Shilajit को अपनी daily lifestyle का हिस्सा बनाइए और रहिए active.
0: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
2: Big 106.2. That's My Song by E-End.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग 4:06।
1: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड इवनिंग। 43 डिग्रीज सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएई। डोंट फॉरगेट कि आज भी अनस्टेबल वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी अंधड़ कभी तूफान, एंड इनलैंड एरियाज एंड ईस्टर्न एरियाज में बारिश के चांसेस भी, सो बी केयरफुल।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग

Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड ऑल द वे टिल 5 PM एंड वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कुछ घंटे और बचे हुए हैं. इफ यू नॉट ऑलरेडी ऑन योर वे टू वर्क, आई मीन हो सकता है आपका वीकेंड शुरू हो गया हो, जल्दी निकल गए आज कुछ बहानेबाजी करके हैं मेरे सेलू लोग. लेकिन क्या प्लान है वीकेंड का? इफ देयर इज समथिंग अमेजिंग दैट यू गॉट प्लान, समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, शेयर इट विद मी ऑन 0543091062. दैट इज द व्हाट्सएप नंबर. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड शो दैट आई डू. And that's 7 to 9 on a Saturday evening. And then Sunday 10 a.m. to 12 p.m. Also, it is called The Big Binge. Okay, कौन सा वो शो है, OTT फिल्म है जो आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, so that you save some time and don't like, you know, keep asking, looking for reviews. बहुत time waste होता है उस चक्कर में. So, इस बार, spoiler alert, I'm going to be talking about Adarsh Bal Vidyalay. ये TVF का शो है, starring KK Menon, that... has got lots of people talking, काफी mixed reviews हैं. So, what is my review about this show, Adarsh Bal Vidyalay? That's coming up. So, something to look forward to over the weekend. एक बार फिर, The Big Binge, Saturday शाम 7 से 9, and then Sunday 10 a.m. to 12 p.m.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher, mazboot ban mazboot. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: दिस इज द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. Finally, Friday. ऐसा लग रहा था एक महीना लगेगा Friday आने में. आज Friday आ गया है. All set to keep you company here until 9. मैं हूँ Mansi. I love, love, love the weekends. Because वीकेंड्स पे मुझे कुछ ना करना सबसे अच्छा लगता है. जहाँ सारी दुनिया प्लान्स बनाती है, अगर मेरे साथ कोई भी प्लान बनाओ आप वीकेंड का, ट्रस्ट मी कि मैं फ्राइडे रात तक उसे कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि अब मैं उस उम्र में आ चुकी हूँ जहाँ मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है. फिलहाल आपके साथ मैं रहने वाली हूँ अंटिल 9, एंड सो मच दैट्स हैपनिंग दिस इवनिंग. वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड टू स्टार्ट विद व्हाइल यू आर हेडिंग होम. हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं. अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं, दिस इज इट. वी विल बी कैरियोकिंग इन जस्ट अ बिट. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
2: Bollywood.

0: have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. And honestly, जो खुशी फ्राइडे शाम को होती है ना वो मुझे सैटरडे शाम को नहीं होती है क्योंकि फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है. वैसे लॉन्ग वीकेंड आने वाला है बट लोगों ने एक एडवांस में प्लानिंग कर ली थी तो छुट्टियों की डेट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है. मोर ऑन दैट बट व्हाइल यू आर हेडिंग होम एवरी सिंगल इवनिंग हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं. गाना आए या ना आए, अगर आप गाना गाते हैं यू एंजॉय सिंगिंग, दिस इज इट. आप बस गाइए, ऑडियंस मेरी तैयार है. योर चांस टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट व्हाइल योर out and about driving, very very simple. If you love karaoke to bas bathroom singer mat raho, yahan pe aake karodon logo ke samne apne talent ko dikhao.
1: Karaoke.
2: So aaj sham ka track is one song that is very very popular if you've ever had a toxic ex. मतलब अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें किसी ने धोखा दिया तो ये गाना आपने भी कई बारी सुना होगा in a lot of different versions.

थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेट्स सी अगर आपने गेस कर लिया है. एंड इफ यू हैव एंड यू एंजॉय सिंगिंग देन ईदर सेंड मी अ व्हाट्सएप या फिर आप कॉल कर सकते हैं 800-1062 पे. व्हाट्सएप नंबर इज 0543091062. वी आर कैरियोकिंग, वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड राइट हियर. व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग दिस सॉन्ग वी हैव गॉट सचिन जिगर विद

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
4: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
5: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It's packed like how? A 35 to 40 minute delay at the moment. If you are taking the Hesse Street, JVT, JVC, all the way towards Motor City, bahut hi slow moving traffic hai. There's traffic on the first Alkhel, heavy traffic at the moment. Agar aap Russell Core Industrial Area ke aas paas hain. Also, DIFC Business Bay, filhaal, it's showing 18 se 20 minute ka delay. Heavy traffic though, agar aap Dubai Mall ke aas paas hain, it's kind of packed bumper to bumper. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
5: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: Prem bhai,
8: are gira to

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday evening, we're bringing in the weekend. We are karaokeing, the only platform for bathroom singers. Gana aaya na aaye, agar aap gaane ka shauk rakhte hain, to bas aap apne talent ko sirf bathroom tak mat rakho. I'm giving you an audience, a platform, a concert to host. Right now, I've got Santosh, who sent us a WhatsApp and he's saying ki aap jis singer ki awaaz mein bolengi, main us singer ki awaaz mein gaana gaunga. Confidence.
2: Now I'm embarrassed, but
1: no, I am very, very excited. So, I mean, if you can mimic singers, that means ki aap gaana gaate hain, you are a professional singer?
2: No, not really. Bathroom singer,
1: थोड़ा
2: बाथरूम से बाहर भी कभी कभी कर लेता हूँ.
1: बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपके गाने के बाद लोग कहेंगे कि हमारा फेवरेट सिंगर जो है वो आप ही हैं.
2: आए काश.
1: तो आपने कभी सोचा नहीं सर कि प्रोफेशनली गाना वाना गाना चाहिए?
2: हाँ सोचा था, एंड देन लोगों ने बोला कि चल आगे बढ़.
1: अरे अब तो मैं डर गई हूँ सर, ऐसा मत करना कि यहाँ भी लोग जो है

आगे बढ़ जाए थोड़ा, मतलब रोजी रोटी दुकानदारी है मेरी भी. बट आई हैव हाई होप्स. आई एम गोना प्ले योर ट्रैक, वेरी पॉपुलर गाना, मेरे महबूब कयामत होगी, जो आप गेस कर ही चुके हैं. हाँ, बर्थडे था, बट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. All right, Santosh, this is your track.

0: सराउंड साउंड में गाया आपने, सराउंड साउंड में, मतलब नो डाउट के आप खाली बाथरूम में नहीं, बाथरूम के बाहर भी गाते हैं।
1: बेडरूम में हूँ।
0: बेडरूम में सराउंड साउंड के साथ मेरे महबूब का याद होगी, संतोष मजा आ गया, मतलब क्या शुरुआत की है, बहुत अच्छा आप गाते हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, दिस इज द अल्टीमेट गाना टू डेडिकेट अपने एक्स को, तो ऐसा कोई महबूब था जिसने मोहब्बत रुसवा की है और फिर टूटे दिल से संगीत निकला?
1: थे।
0: मतलब नंबर भूल चुके हैं कि इतने सारे लोगों ने दिल तोड़ा है?
1: नंबर क्या है, सीरियल नंबर भी, फोन नंबर भी।
0: वही मैं कह रही हूँ ना, लोगों ने आपके दिल तोड़े, सिग्नल जैसे लोग जो सिग्नल पे इस वक्त बैठे हैं, आपने उन्हें इतनी खूबसूरत आवाज में एंटरटेन करा, सो थैंक यू सो मच संतोष, इट वाज
1: थैंक यू सो मच मान,
0: प्लेजर हैविंग यू ऑन एयर,
1: प्लेजर इज माइन,
0: आई थिंक सो फार द बेस्ट सिंगर, सो फार द बेस्ट सिंगर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज व्हाट वी डू, वी सिंग, वी रिलैक्स, वी एंटरटेन, एंड इफ आप भी गुनगुनाते हैं संतोष की तरह गाते हैं, देन गेट इन 800-1062 पर। कारियोकी

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो कुंडली मैच हो ना हो, वाइब मैच होनी चाहिए। अगर वो ऐसे गाने सुनता है तो बस वो मेरा टाइप है। Right on, Big 106.2, we're bringing in the weekend, keeping you company, मैं हूँ Mansi.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: देखो जब लाइफ में लोग मुझसे पूछते हैं ना प्लान क्या है, मैं कभी कोई प्लान बनाती नहीं हूँ, क्योंकि प्लान बनाने से पता है क्या होता है, ये होता है अब पहले छुट्टी ले ली थी मंडे की क्योंकि आपने बड़ी एडवांस प्लानिंग की थी, बट ऑफिशियली छुट्टी अब 28 दैट इज 28 अगस्त को है। यस, फ्राइडे 28 अगस्त इज द ऑफिशियल छुट्टी फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इज वेल, विच मार्क्स अ 3 दिन की छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे। बट कई लोगों ने ऑलरेडी मंडे की छुट्टी जो है सोचकर छुट्टियाँ अपनी प्लान कर ली हैं, तो अब जाएगी एक एनुअल लीव आपकी। फिलहाल मेरी तरह जिन्होंने कुछ प्लान नहीं करा, आई थिंक वी आर ऑलवेज द लकी वंस, क्योंकि जितना भी प्लान कर लो जिंदगी का प्लान कुछ और ही होता है। फिलहाल फ्राइडे है, वीकेंड है, आई एम श्योर कई लोगों का प्लान कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ कुशाल टंडन, जिसने कल रात अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी डाली है, ऐसे दोस्तों को पार्टी में बुलाने से पहले डर लगता है। मोर ऑन दिस व्हेन आई कम बैक राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: बिग 106.2

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: मेरे बॉयफ्रेंड से भूलू भूलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको।
2: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 6:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 92. The beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
2: नमस्ते.
3: ओला.
2: अस्सलामुअलैकुम.
4: बोंजूर.
5: नी हाओ.
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: InsurersMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuranceMarket.ae.
7: Early in the morning. Come
0: on. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, we're playing the 5-second rule. It is Friday ki sham, weekend wali feels, weekend wala mahal. Joining us is Abhishek. Hi, good evening.
3: Hi, good evening. Kaise hain aap?
2: Main theek hoon, Abhishek. Aap kaise ho?
3: Theek hoon, chal raha hai.
2: Good boy ho na aap? Lag raha hai ki collar ke upar button sare band hote honge aapke. Ek bhi button nahi khula hota hoga.
3: I think main aapse pehle bhi mil chuka hoon kisi program mein, shayad kaafi pehle, ek saal, ded saal pehle main aapse pehle mil chuka hoon. आप शायद किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रही जहाँ पे शायद अर्जुन सिंह आए हुए थे.
2: Oh yes, I remember. जब बहुत भीड़ हो गई थी और मैं और हरभजन सिंह भागे थे वहां से, याद है मुझे अच्छे से.
3: क्राउन मॉल.
2: यस, अच्छे से याद है मुझे. कैसा रहा वीक अभिषेक?
3: थोड़ा हेक्टिक था, बट इट्स ओके. मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ.
2: बस मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, बस काम है ना. यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. आगे ही बढ़ेंगे आप. फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, खेलेंगे मजेदार गेम. इट्स कॉल्ड द 5-second रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
3: हाँ तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा इजी.
1: 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: क्विकली नेम 3 फ्रूट्स जो शुरू होते हैं विद एस.
3: इंग्लिश
2: बोले, वही भी बोल दो, बोलो बस. ये लो, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में 5 सेकंड ही खत्म हो गए. 3 अक्षय कुमार की मूवीज अभिषेक.
3: दे दनादन
2: और
3: दे दनादन,
2: दे दनादन, दे दनादन. क्या टाइम खत्म हो गया? दे दनादन,
3: दे दनादन, केसरी.
2: टाइम खत्म हो गया. इट्स 5 सेकंड्स अभिषेक, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक. ओके, 3 थिंग्स दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम.
3: होटल रूम ब्रश, स्लीपर्स एंड
2: 3 चीजें दैट यू नोटिस इन अ गर्ल.
3: हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर.
2: अच्छा, ये देखो 3 सेकंड में इकलौता जवाब दिया है, वो है हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. अगर लड़की तुमसे लंबी हुई तुम्हें चलेगा?
3: ऑफ कोर्स चलेगा, बट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए.
2: हाउ स्वीट ग्रीन फ्लैग है ये बंदा. 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
3: दिल है कि मानता नहीं.
2: अरे अरे,
3: दिल दे दिया है.
2: टाइम भी खत्म हो गया है.
3: दिल तुम्हारा
2: है सनम. टाइम खत्म हो गया है. 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने कॉलीग्स के बारे में अच्छी नहीं लगती है अभिषेक.
3: गुस्सा.
2: अरे टाइम खत्म हो गया है. मुझे एक बात बताओ, व्हाई डोंट यू लाइक देम परफॉर्मिंग बेटर? गुड परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी लगती? चाहते हो कि वो अच्छे से परफॉर्म ना करें?
3: क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ ना, मुझे आगे रहना है.
2: अच्छा, ये देखो
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Honesty के 10-on-10 गेम जो आपने बहुत ही खराब खेला है अभिषेक, बहुत ही खराब. बस वो हाइट, पर्सनालिटी, बिहेवियर के अलावा कोई जवाब आपने टाइम पे नहीं दिया है. तो मिल गई ऐसी कोई लड़की?
3: हाँ, मिल तो गई है.
2: खुश नहीं हो? दूसरी ढूंढ रहे हो?
3: बिल्कुल मैं खुश हूँ. I mean, जिस तरीके से लाइफ चल रही थी, सोचा था कि हाँ she will hold me and you know she will always support me. तो बस वैसा चल रहा है. ऐसा कुछ ज्यादा लाइफ से कुछ भी डिमांड नहीं है, बट यही है कि बस जो मिल रहा है.
2: क्या कटी पतंग टाइप की कहानी अभिषेक. फ्राइडे की शाम है, तुम्हें जरूरत है दवाई की. समझियो कौन सी दवाई मैं बात कर रही हूँ. घर जाके वो दवाई लो.
3: अभी सावन
2: सावन
3: चल रहा है.
2: मैं समझ गई, सावन चल रहा है. अभिषेक, हैव अ ग्रेट वीकेंड.
3: आपको भी.
2: थैंक यू, बाय. या 5-second रूल अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर.

0: News Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. Namaste.
1: Hola.
0: Assalamualaikum.
2: Bonjour.
3: Ni hao.
2: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
4: Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
5: Din bhar active aur focus rehna hai. तो डाबर शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए. छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट.
4: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: मिस्ड योर मॉर्निंग बज़?
6: ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: यस,
7: देयर इज एन ऐप कॉल्ड स्टेपा इन व्हिच यू नो यू कैन हैव यू हर्ड ऑफ दैट ऐप? इन विच यू कैन एक्चुअली बेट ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप पे बोली लगा सकते हैं कि आज का जो स्टेप काउंट है मैं कंप्लीट करूंगी कि नहीं करूंगी. एंड सो यू कैन $5 $10 ऐसे डाल सकते हो आप. सो इफ यू कंप्लीटेड यू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी. इफ यू डोंट देन यू लूज बिकॉज यू नो समबडी प्रॉब्ली मारवाड़ी केम अप विद दिस थॉट कि जब तक पैसों की बात नहीं होगी तब तक लोग अपना स्टेप काउंट कंप्लीट नहीं करेंगे. बताओ आइडिया अच्छा है कि बुरा है? आप किंजल नाम से तो गुजराती लग रहे हो. वेयर आर यू फ्रॉम?
8: आई एम फ्रॉम दिल्ली.
7: आप दिल्ली से हो फिर भी इतने कंजूस हो यार, क्या है यार? मैंने कहा $5 इतना भी पैसा खुद पे नहीं लगा. इट्स लाइक पुटिंग मनी ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक यू गिविंग इट आउट इन चैरिटी, राइट?
9: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
5: 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 35. काफी ह्यूमिड माहौल है फिलहाल. ह्यूमिडिटी 58% पर.
9: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: गुड इवनिंग, फ्राइडे की शाम है। अगर दुबई में आपको हिल स्टेशन के फील्स लेने ना, तो आप हमारे ऑफिस आ जाओ। देखो, घर में तो हस्बैंड वाइफ के बीच आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड हो जाता है कि एसी का रिमोट किसके हाथ रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा। ऑफिस में ये कैसे डिसाइड होगा यार? Coming up, also we're playing this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं फटाफट, खटा खट, 5 सेकंड के अंदर। I know it sounds very very easy, but wait until you play this game. इसी के साथ we've got a song that I am completely obsessed with. In fact, I loved the movie. दो तीन बारी मैं देख चुकी हूँ, बस एक सीन मैंने काट दिया है। If you love doggies, तो आप वो सीन नहीं देख पाओगे। तू या मैं से, coming up next right here on The Big Thrill.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Nancy. We're playing the 5-second rule. Joining us is Kajal. And I said to Kajal, Kajal, what a beautiful name. So she's like, you're the first one to compliment my name.
2: Right.
1: Before today, no one complimented me. What a beautiful name.
2: No, everyone is saying it's very common name.
1: अरे तो क्या हुआ, it is common but still it's beautiful, right?
2: Yeah, I know it is beautiful.
1: आपकी आंखें सुंदर होंगी बहुत. ये देखो, लड़कों को ये सब करना नहीं आता है, ये नहीं कर पाते ऐसी तारीफ.
2: Right.
1: है ना?
2: Right. लड़कों को कुछ भी नहीं आता एक्चुअली.
1: आपको जो बोलना है बोल सकते हो, मैं बोलूंगी तो फिर बस फोन आने शुरू हो जाएंगे कि स्टीरियोटाइप करती है, शी हेट्स मेन. आई डोंट हेट मेन, आई लव मेन, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड्स. फिलहाल काजल, क्या करते हो आप?
2: जॉब कर रही हूँ ट्रेवल एजेंसी में एज एन अकाउंटेंट.
1: वेरी नाइस, मजा आ रहा है?
2: चल रहा है.
1: हाँ, चलते रहना चाहिए, बस गाड़ी चलते रहनी चाहिए. फिलहाल विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5-second रूल.
3: ओह या.
1: तीन ऐसी चीजें जो आप लड़कों में नोटिस करते हो.
2: लुक, मनी, एफर्ट्स.
1: अभी लड़के बोलेंगे, अभी कह रही थी लड़कों को कुछ नहीं आता, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट मनी.
2: या, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट.
1: Moving on, 3 things that you find only at an airport.
2: Trolley bag, luggage and Whoa. Airport stuff.
1: Very nice! 3 type के customer जो आपकी agency में call करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है.
2: Query करने वाले, फिर booking ना करने वाले and
1: एज अ ट्रैवल एजेंट, 3 ऐसे झूठ जो आप कस्टमर्स को बोलते हैं.
2: हमारा प्राइस सबसे बेटर है, ये है द चीप वन, एंड यू विल नॉट गेट दिस सर्विस फ्रॉम एनीवेयर.
1: काजल, आई लव यू, यू आर सो ऑनेस्ट. 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
2: हम दिल, गाने हाँ. हम दिल दे चुके सनम, दिल तो पागल है.
1: अरे अरे अरे, टाइम खत्म हो गया. ये साइड में जो बैठे हैं ये कौन है जो हेल्प कर रहे हैं? कौन है?
2: He's my colleague.
1: इतना शर्माते हुए क्यों? He's my colleague.
2: No, he's my colleague. Yeah.
1: ये एफर्ट नहीं करता?
2: एफर्ट्स ये करते हैं.
1: लुक्स कैसी है इनकी आपके हिसाब से? अच्छी.
2: अरे अरे, आप गलत जगह जा रहे हो. He's married. He has 2 kids.
1: हाँ ठीक है, दूरी बैठो इससे, बहुत जरूरी है फिलहाल. For the first time, बहुत कमाल खेला है.
2: Yeah, thank you so much. Thank you.
1: अब अगली बार अगर आपको हॉलीडे बुक करनी है, काजल के पास जाना है, या आपको सच बताएगी, बोलना कि हमने सुना था तुमने मानसी से क्या कहा था, हमें सारी सच डिटेल्स दो. बट यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, और ये जो कॉलीग है इससे दूर रहो थोड़ा, ठीक है? चलो बाय. यही 5 सेकंड रूल. आपने खेलना है तो कॉल करना 800-106-2.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, फ्राइडे की शाम है। सवाल बहुत सिंपल है। ऑफिस में एसी का टेम्परेचर आखिर डिसाइड करता कौन है? बॉस, एचआर या फिर आप और मैं? क्योंकि हमारे ऑफिस में तो आते जाते एसी का टेम्परेचर कोई भी छेड़ जाता है। फिलहाल ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जो एक्चुअली कल रिलीज हुई थी, बट टुमारो हैपेंस टू बी अ वीकेंड। इट इज अ कल्ट क्लासिक। 1997 में ये मूवी रिलीज हुई थी। नदीम श्रवण का म्यूजिक, किशोरी लाल, अर्जुन, राजीव और गंगा की कहानी अगर आपको याद आ गई है। वैसे मैं और हिंट्स दूंगी। विल सेलिब्रेट दिस मूवी इन जस्ट अ बिट। फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हां जी द टाइम राइट नाउ 7:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Authentic, original, and better than

0: मैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamu alaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
8: Aapki Jeet, Dabur Shilajit, Ayurvedic supplement for men. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
9: Don't miss your chance to get a big cash win with Big Ticket.
10: A guaranteed 15 million dirham grand prize.
9: Plus 5 consolation prizes of 100,000 dirhams each.
10: And with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirham.
9: Don't forget the 4 weekly cash e-draws of 25,000 dirham.
10: Buy now at bigticket.ae.
11: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 35, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 62% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बाहर इतनी गर्मी है एंड यहाँ हमारे ऑफिस में हिल स्टेशन वाली वाइब है। नीलम का मुझे फोन आया कि कैसी हैं आप इतनी गर्मी में। मैंने बोला आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, हमारे ऑफिस आ जाओ। यहाँ पे मतलब बिल्कुल सर्दी वाला माहौल है, यूरोप वाली फील्स आएंगी। अभी तो यूरोप में भी हीट वेव है, तो हमारे ऑफिस में अलग ही हिल स्टेशन का माहौल है। आपके ऑफिस का क्या हाल है नीलम? ठंड लगती है अंदर? नहीं लगती है?
3: हमारे ऑफिस का भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है हिल स्टेशन। ऐसा लगता है कि आप न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं, और बाहर से अगर आओ तो विंटर वेयर पहनकर आओ तो लोगों को लगता है ये कहाँ जा रही है विंटर वेयर में इस समय, और अंदर आके समझ आता है मौसम ठीक है इसके लिए।
2: तो कौन डिसाइड करता है ऑफिस में आपके एसी का टेम्परेचर? हमारे यहाँ तो आते जाते लोग छेड़ के चले जाते हैं।
3: यहाँ पर भी सेम ही है, किसी को गर्मी लगती है फिर 5 मिनट में फिर सबको ठंड लगती है। पूरा टाइम ये होता रहता है, पर ऑफिस का माहौल बहुत ठंडा होता है।
2: नहीं मतलब ये टेम्परेचर वाइज के वैसे आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा गर्म कौन करता है माहौल? बॉस के कॉलीग्स कि नीलम?
3: एक्चुअली मैं ही करता
2: हूं। मैं बोला नीलम लग ही रहा है, नीलम जो ऑफिस की वो है लीडर, यूनियन लीडर।
3: ये तो है।
2: तो भड़काते हो आप मतलब सॉलिड अपने कॉलीग्स को अगेंस्ट द एचआर?
3: नहीं नहीं, भड़काना नहीं, गर्म माहौल करने का मतलब भड़काना नहीं होता यार। गर्म माहौल करने का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सबको बहुत एक्स्ट्रा खुश रखो, माहौल वैसे गर्म रहता है सभी, और थोड़ा सा इधर उधर इसकी तारीफ उसकी तारीफ, तो वैसे सब।
2: अच्छा मतलब डिप्लोमेटिक खेलते हो आप, क्लेश नहीं होता ऑफिस में? लड़ाइयां वगैरह नहीं कराते हो आप?
3: मैं तो नहीं कराती, सुलझाती हूँ यार।
2: अच्छा तो कोई और कराता है फिर?
3: और कोई कराता है, वो है दो तीन लोग ऐसे
2: सब ऑफिस में होते हैं वो तो। मेरे जैसे लोग ना बैठ के देखते हैं, मैं ऑडियंस हूँ उस रियलिटी टीवी शो की। मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा घी भी डालती हूँ, करती हूँ मैं वो काम। नीलम आप भी करते हो ठीक है, मुझे पता है।
3: नहीं बहुत रेयरली, ज्यादातर सुलझाने में काम होता है। कभी कभी पोजीशन आप ऐसी रखते हो ना ऑफिस में कि आप भड़का नहीं सकते, वो आपके लिए हेड के बाद।
2: मैं कह रही हूँ भड़काओ नहीं, थोड़ा सा बस घी डालते रहो कि वो चिंगारी लगी रहे। ओह मजा आ गया, मजा आ गया नीलम बात करके।
3: भड़कती रहनी चाहिए, वो बात तो है।
2: फिलहाल क्या प्लान है यार वीकेंड का?
3: वीकेंड का वी आर ट्रेवलिंग।
2: वेरी नाइस, वेर आर यू गोइंग?
3: यार घर इंडिया।
2: ये तो बड़ी दुखी लग रही हो कि सास के पास जा रही हो।
3: नहीं नहीं उनके पास जाती तो अच्छा लगता, घर जा रही हूँ दुखी नहीं, खुश हूँ। पर हाँ अभी बस यही ना कि इस समय गर्मी है बहुत ज्यादा, इंडिया में भी गर्मी है, तो बस वही सोच के लग रहा है। अभी बारिश तो हो रही है, 2 दिन से सुन रहे हैं कि गुड़गांव में बारिश है अच्छी।
2: इनको अभी आदत लग गई है, अभी नहीं रह पाएंगे वहाँ पे। यहाँ तो बाथरूम में भी एसी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: वहाँ जाओ तो आपको कहीं ना कहीं सारी जगह गर्मी तो है, और अब हम लोग को आदत वैसी रही नहीं।
2: दुबई स्पॉइल्स अस। कितने आईफोन लेके जा रहे हो?
3: नहीं आईफोन नहीं लेके आती, मैं आईफोन वाली नहीं हूँ।
2: रिश्तेदार मांगते ना एक जरा 2-3 आईफोन ले आना, जैसे कि मतलब धनिया के साथ मिर्ची फ्री है। बट नीलम एंजॉय योर छुट्टी, हैव अ ग्रेट हॉलिडे एंड हैव अ लॉट ऑफ फन।
3: थैंक यू सो वेरी मच।
2: बाय नीलम, हैप्पी हैप्पी जर्नी। बाय बाय।
3: थैंक यू थैंक यू।

0: insuresmarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
5: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Extremely slow moving, अगर आप गिसेस के आसपास हैं, it is kind of bumper to bumper, बहुत ही slow moving traffic near to R1, plus if you're on Dera going towards Gurair, again a 25 to 30 minute delay, heavy traffic पूरे route पर, Festival City के पास भी there's traffic, Sheikh Mohammed bin Zayed, a 27 minute delay until Mohisna gets better post that, and there is still some traffic that I see on Hesse Street, not really bad, but 12 से 18 minute, इसके अलावा कहीं अटके हो, बताओ 800-1062 पर।
5: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hi, finally weekend hai and I'm sure you're making plans, but agar plans ke beech mein you're feeling low, you're feeling weak, then I've got the solution. Aaj ke modern lifestyle mein वीक फील करना, कमज़ोर फील करना इज़ वेरी वेरी कॉमन. इतना स्ट्रेस है, फास्ट पेस लाइफ स्टाइल है, द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फीलिंग लो, फीलिंग लेथार्जिक. बट यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना एंड योर पावर. अगर आप भी शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. एंड दीज आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. आज की जीत विद डाबर शिलाजीत. डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी medicines or pharmaceutical products.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, Friday ki sham hai. Ye hai Big Thrill, main hu Nancy. And I'm going to take you back to 1997. Yes, 1997. Ab zara calculation karo kitne saal ho gaye. Mera thoda sa gadbad hai, log kehte hain khoobsurat ladkiyon ka maths acha nahi hota hai. I'm assuming 29 years and I might not be wrong. But imagine जो बच्चे 1997 में इस दुनिया में आए थे, they're also almost turning 30. Okay, that's not the point. The point is we're talking about this movie that's going to complete 29 years tomorrow. It is a cult classic. सुभाष घाई की movie है. किशोरी लाल, अर्जुन और राजीव साथ में गंगा. अब इतने hints काफी हैं उनके लिए जिन्होंने movie की multiple times देखी है, because it is a cult. Brilliant music, and of course the lead actress, she made her debut and she also changed her name for this movie, because back then Subhash Ghai was obsessed with the letter M and unhe lagta tha ke M naam ki agar meri actress hogi to movie hit hogi, and so far very very true for Subhash Ghai. Okay, so Instagram pe bhi aap jawab de sakte hain agar aapne guess kar liya ye kaun si movie hai, fatafat se aap bataiye, and aap Instagram pe ja sakte hain 106.2 Big FM it is. Filhal ek aur chhota sa hint deti hu, iske baad to aur aasan ho jayega.
2: Yani
3: ye ki Arjun aa gaya, aap usse khud pooch lijiye.
2: Oh
3: Sorry, I'm sorry. ये लो, तुम्हारे और राजीव के लिए।
2: ये क्या मतलब हुआ? तुम हमारे साथ अमेरिका नहीं आ रहे?
3: देखो गंगा, वो क्या है कि मुझे अपने गांव मथुरा वापस जाना है। पिताजी का वहाँ पर एक घर है, उसे तोड़वा कर एक म्यूजिक स्कूल बनवाना है और बहुत सारे लीगल पेपर्स हैं जो साइन करने हैं।
2: लेकिन ये बात तो तुमने पहले नहीं बताई।
3: मौका ही नहीं मिला। ये लो रखो।
2: ठीक नहीं किया तुमने। एक तो पहले
1: अगर आपने गेस कर लिया ये कौन सी मूवी है, व्हिच आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। आई लव दिस मूवी। 801-0062 पर।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग
1: हेलो,
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: इट इज स्टिल 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 58% पर।
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, Friday शाम है, weekend वाले feels, weekend वाले vibes, थोड़ा सा उम्र भी आपको feel कराती हूँ, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ. People who were born in 1997 are turning almost 30 because अभी मुझे पता चला कि इस movie को 29 years होने वाले हैं कल, and it is a cult classic. सुभाष घई की movie है. It's a musical drama directed by the showman Subhash Ghai and Kishori Lal Arjun Rajiv Ganga ki kahani. In fact, Subhash Ghai ne lead actress ka naam change kiya tha. Her real name was Ritu because he believed ke name starting with M were lucky for his female debutants, chahe wo Madhuri Dixit ho, Meenakshi ya phir Manisha Koirala. Lead role of Ganga was written exclusively for Madhuri Dixit, but she opted out because she was shooting खलनायक विद सुभाष घई एंड काफ़ी इश्यूज हुए थे, इसलिए उन्होंने ये मूवी साइन नहीं की. जूही चावला अगेन वॉज कंसिडर्ड, बट फिर फाइनली ऑडिशन क्रैक किया एक न्यू कमर ने. शाहरुख खान का ये जो हिट गाना है इस मूवी से जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, बॉडी डबल ने किया था बिकॉज शाहरुख खान वॉज इन इंडिया. ही हैड टू इमिजिएटली फ्लाई टू इंडिया बिकॉज हिज वाइफ गौरी वॉज एक्सपेक्टिंग आर्यन, एंड सुभाष घई ने जो है सिर्फ क्लोजअप जो है वो शाहरुख खान के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस शॉट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बॉडी डबल है. बहुत सारे हिंट्स दे दिए, आई एम श्योर आपने मूवी पहचान ली है, बट जवाब देने के लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. सो गो एंड कमेंट देयर, मुझे बताओ कौन सी मूवी है ये. फिलहाल जिस गाने की मैं बात कर रही थी जिसमें घई साहब ने बॉडी डबल यूज किया था,

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill, Mansi. The weekend is here. 5 दिन मेहनत के बाद छुट्टी. वैसे अगर आजकल आप काफी थक जाते हैं एंड बहुत थकान सी रहती है, यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एनर्जी की कमी होना, ताकत की कमी होना, कमज़ोर फील करना इज़ वेरी वेरी कॉमन. द स्ट्रेस, फास्ट फूड, वेरी वेरी फास्ट लाइफस्टाइल. बट यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना, योर पावर. अगर आप भी शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, दिन की शुरुआत कीजिए डाबर शिलाजीत के साथ. दीज आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स एंड दे मेक यू फील stronger and more confident. Aapki jeet with Dabur Shilajit. Do consult your doctor before taking any medicines or pharmaceutical products.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
8: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
9: नहीं, ये तो मुफ्त है.
8: गुड, चलो फोन लगाओ.
10: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2,
0: the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एंडी जी के साथ मेरा यहाँ से बाय बाय कहने का टाइम. मैं आपसे मिलती हूँ अब कल ओवर द वीकेंड. आई कीप यू कंपनी विद द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक एंड ऑफ कोर्स इन वीक डेज 5 to 9 विद द बिग थ्रिल. अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम. इट इज यू कैन से हेलो टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग एंड ऑफ कोर्स यहाँ से जाने के बाद आई विल बी टॉकिंग टू यू देयर ऑन इंस्टाग्राम. हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड. अगर मेरे और दिलजीत दोसांझ जैसे आपको भी विल ले रहना कुछ ना करना अच्छा लगता है देन Do that. पूरे हफ्ते हम इतना कुछ करते हैं. अलार्म्स हैं, मीटिंग्स हैं, ईमेल्स हैं. आई थिंक वी डिजर्व इट. 2 days ऑफ डूइंग एब्सोल्यूटली नथिंग एंड इट इज अ लग्जरी. कुछ ना करना ऑन द वीकेंड इज अ लग्जरी. सो या इफ यू डोंट वॉन्ट गो आउट, इफ यू डोंट वॉन्ट मीट पीपल, डू नॉट मेक प्लान्स, डू नॉट टेक दैट प्रेशर. बस आपको जो देखना है वो देखो, जो खाना है वो खाओ. आई थिंक दैट्स हाउ वी रिचार्ज आवर बैटरीज एज मिलेनियल्स ओवर द वीकेंड. फिलहाल सम ग्रेट म्यूजिक अप नेक्स्ट ओवर द वीकेंड एज वेल. स्टे राइट हियर. ये है बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बाय. बिग

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप चुम्मे को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय
1: insurancemarket.ae
0: द बिग जेल where every song feels like a deep breath after a long day only on big 106.2 the beat of bollywood

0: बॉलीवुड
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
2: 2 या 4 कब तक वापस लौटेगा
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में
2: 4 या 5
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सिड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
4: द बिग बिंज विद सिड सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Big 106.2, the beat of Bollywood.